दोस्तों साथियों, आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सर लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं विनेश, प्रोग्राम डायरेक्टर। और जी हां, आज हमारे जो प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपको सुनाने के लिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हमारे पास गेस्ट होते हैं और बातचीत में काफ़ी जो समय निकल जाता है। तो हम शुरू करेंगे गीत से, और गीत के बाद में कुछ हम आपसे कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ समाचार है, कुछ इवेंट्स आ रहा है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो चलो पहला गीत हम आपके आप को सुनाते हैं। आशा करते हैं गीत आपको पसंद आएगा।

जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सुन रहे हो जलसा फिजी रेडियो, और आशा करते हैं कि ये जो गीत अभी आपने सुना पसंद आया हुआ होगा। ये मूवी हीरो की थी जो 1983 में रिलीज़ हुई थी। जैकी शरोफ और मीनाक्षी ने इसमें काम किया था और सुभाष गाई ने इस फिल्म को बनाया था। बहुत ही अच्छी स्टोरी, अगर आपने नहीं देखा आप दोबारा देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया मूवी है। और ये जैकी शरोफ का जो फर्स्ट मूवी था उसी से उसने जो ये काम बोली उनका जो काम शुरू किया था, आई मीन एज अ हीरो। तो आप ये मूवी देख सकते हो, और ये मूवी उस वक्त में अच्छा चला था, काफ़ी जो हिट हुआ था। मैं सिर्फ ब्लॉकबस्टर इसको बतलाया गया था, एंड इट रेन फॉर 750 डेज इन सम सीरीज। तो काफ़ी जानो जैकी शरूफ के लिए ये जो पहला कदम था बहुत बढ़िया था। और इसमें जो सपोर्टिंग कास्ट थे, अगर मूवी देखोगे तो शम्मी कपूर, संजीव कपूर ने बहुत ही बढ़िया जो काम किया था, और अमरीश पुरी जो विलन बनते हो तो अमरीश पुरी है ही है, उसके तो सभी जो कोई भी किरदार में आता है बहुत अच्छा जो काम करता है। साथ साथ में शम्मी कपूर भी थे, और ये जो गीत थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे बहुत अच्छा था, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो ये जो म्यूज़िक जिन्होंने जो साउंड ट्रैक दिया था। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक और नेक्स्ट जो गीत सुनाते हैं, और गीत के बाद में फिर हम कुछ चर्चा करेंगे।